के छोड़ गया सो रामन, काहे कीजत है मन पावन। जब जम आए केस ते पकड़े, ते हर को नाम शिडामन रखाओ। काल अकाल खसम का कीना, यो परपंच बधावन। कहे कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो, बसे पंच किरसाना। नैनु नगटू श्रवणु रसपत, इंद्री कया ना मानना। बाबा आप ना बसो एगा।

सिरन कहू न सिमरो राम, कहे कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गुवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। अराग मारू बाणी जय दो जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चंद सत पेदया नाल सत पूरया, सूर सत खोड़सा दत किया, आ बल बल तोड़या आ चल चल थपया, आ कड़ कड़या तय अप्यो पिया, मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया, अरहाओ अर्ध को अर्धया, सरद को सरदया, सलल को सलल सम्मान आया, बद जय देव जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर, मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, हरहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा, धान जोबन का गर्भ न कीजै, कद ज्यों गल जाएगा, जौ जम आए केस गए पट गए के।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरै रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे नीचे ऊच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे तै रविदास सुनो रे संतो। हर जी उते सवे सरे मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध। नवृद कर तलता के हर गा हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी व्यास विचार कहो परमार्थ। राम नाम सरनागी सहज समाद उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी कहे रविदास उदास दास मत। जन्म मरण पै भागी तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पल। हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा। प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। बाबी गा प्रे बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले। अंक समाणिया हर अंक समाणी, जा प्रा पाणी सा सुहागण नारे। नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रव तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हो बलिहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरसबदी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए। हर स्यो प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रा पावे। तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण। हौ क्यों कंत वसारी, कुन कन शाए बरस सुपाए। मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी। कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े। बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहौड़े। फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे। बिरे बरो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले। क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली। क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे। जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेश करे। तन देखे हर द्वार, आप हो दया करे। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो। दूर न जाना अंतर माना, हरका महल पछाना। नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना। माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार। सातन बिनो करे तन बिनो करेंदी, गुणसारेंदी गुणसारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा। निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली। नानक जिड़ जाने थी जैसी।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों पिर बिन जीव गए राम जब लग दर्शन होए

तिहाई। हम सतगुर विठो कुमाए, हम पाथर गुरनाव, बिग पौजल तारिये राम। गुरदेव शब्द सुखाए, मैं मूढ़ निस्तारिये राम। हम मूढ़ मुग्ध किशमित नहीं पाई, तू अगम वड़ जानिया। तू आप दयाल दया कर मिले,

अभीज गुर सतगुर दर्श पाया मार्ग पंत चले गोर सतगुर संग सिखा आन देन भगत बाणी खेन खेन निमख विखा हर हर भगत बाणी प्रभ केरी सब लोग वेखण आया जिन दर्श।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लियो दास नानक को प्रभु जी होए सहात। केदारा मोहल्ला पंजवा हर बिन कोई न चालत साथ दीना नाथ करना पर स्वामी अनाथा के नाथ रखाओ सुध संपत दिखिया रस भोगवत।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस्त।

निभगी खेप हमारी, तरीक कलवार ग्वार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो मान मतवार, मेर सर पाठी

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रघाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए, मैं हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन बौर न देखे आए, कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जाप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेवला।

राम ना बेन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे नेफल मन भ्रमना रखाओ पुस्तक पाठ दा करण वखाण संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी राम ना बेन उर्ज मरे डांड कमंडल शिखा सूद धोती तीर्थ गमन अद प्रमण करे राम ना बेन सांत न आवे जप हर हर नाम तो पार परे जटा मुगट तन पसम लगाई बत्र छोड़ तन नगन पया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बंधे भेख पया जेते जी जंत जल थल मैयल जतर कतर तू सर्व जिया गुर प्रसाद रा

होय, निकर वसे सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माते पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो ससंगत मेलाए, नांग किसनों दे वडियाई।

प्रेवड़ भागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छै सोई फल पावै गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा दुख जमे दुख मरे। दुख जकार कमाए गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै। बिस्ता महे समाए त्रिग त्रिग मनमुख जन्म गवाया।

जम काल सदा है सिर ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हा मन बसिया, दर साचे पद पाई, भैरो महला तीजा, मानव आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए।

कुछ लय उबार खिन में भयान रूप निकसा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन पै

आओ जा की दृष्टि दुख डेरा टहे अमृत नाम शीतल मन गहे अंग भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी खिन में ऊने सुबर भरिया खिन में सूके कीने हरिया खिन में निथावे को दीनो थान खिन में निमाने को दीनो मान सब में एक रहा पर पूरा सो जापे जिस सतगुर पूरा।

माया लग फूलो संसार, आप भुलाया भुला मनहार, अराच रहया बिरथा व्यवहार रगाओ, पेखत माया रंग बिहाय, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार ना जी मैं पावे, करत करत भी दुख पाया, पूर्ण होत न कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो निरपाई, तार लय सागर संसार रहाओ, जिन को लिखिया हर इहो निदान, सेजन दरगे पावे मान, सोग सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न तावे ताओ, जुगे जुगंतर इहो तत्सार, हर सिमरन साचा बीचार, जिस लड़ लाए लय सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जन सब तेरे हाथ, नानक के प्रसद की साथ, भैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रवे अगर नाम, सगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अभर अपार, रहाओ नाम हमारे नेचल तनी, नाम की महिमा सब

प्रवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करण हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद।

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव वीर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंध।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार

कंत अर्ध उर्ध मुगला गोकास ठुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो

ज्यों जो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी

अंतर उपाया कर से औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिर पवन तनी थंब माए हर पाखे हरनाग सृजन नखे बिदार्यो।

उपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा अगर करता रहे साल घड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रदपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल

राज गुरमत उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रखाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेव तय तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे।

कारोबार सोई करे जे हर जियो पावे सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे अपना प्रसेवे सहज सुपाए नानक नाम से मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफलो बिरख हर के द्वार सची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया।

राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे। जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो

सदगुर पेटे मत बुध होए, हर जू आपे लेहो मिलाए, गुर के शब्द सच नाम समाए, रहाओ मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलगे राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उर थारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नान इव तन बिरख राम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा तेन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे भाग हर भगत कराए, इस मन को बसंत

परया मिर संगत कर प्रभंशे रहाओ तुमरा जन जात अब जाता हर जप्यो पतत पविशे हर कियो सागल पवन ते ऊपर हर सोभा हर प्रदिनशे जात अजात कोई प्रवचावे ता पूरे मानस तिनशे से तन वड्डे वड पूरे हर जन जेन हर तारो हर उर्चे हम ढींडे ढीम बहुत अद भारी हर तार कृपा प्रभ मिलशे जन नानक गुर पाया घर तूठे हम किए पतत पविशे बसंत हिंडोल महला चौथा मेरा एकिन मनुमा रह न सके नित हर घर नाम रस गीदे जो बारक रसक परे थन माता थन काढ़े बिलल बलीदे गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे वड़े भाग गुर सतगुर पाया विच काया नगर घर सीधे रघाओ जन के सास सास है जेते हर बेरे प्रभु हर बीदे ज्यों जल कमल प्रीत अद भारी बिन जल देखे सुपली दे जन जप्यो नाम निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की होमे मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेनती जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बोतावे तिल करनी वासा पाईए गुर अंग शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाइए गोविंद जीओ सर संगत मेल घर त्याईए हो में रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए गाओ कार रतन लाल बो मानक लादे मन भ्रमया लय ना सकाइए ज्यो ओडा कूप गुज खिन काढ़े त्यों सतगुर वत्स लहाइए जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाएगे मधुसूदन।

काट काट रया सुमाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाए, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद।

दुष्ट दूत सा प्रम थके बिन गुरसाचे नहीं जाए। दुख दे संतर रहे ताए किरत ओ नाका मिटसनाहे। कोई अपना बीजिया आप खाहे जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए। नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत महला पंजवा। गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी माया। सर मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम। तारुत सुहावी जिद हर चित आवे बिन सदगुर दिसे बिल लांती। सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास। काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया। गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो लिवास। हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रया। गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध।

तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप न सूझे। परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ उपत परलो प्रवते होवे।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सो साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, गठबंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात ना पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद न सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के भाणे आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वरते हुक्म सुमाए, दू सू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे।

आज जिन जिन सेव्या अंत बार, रे मन सेव तू परे पार, तन्ने सेव्या बार बुद्ध, तिरलोचन गुरमिल पई सिद्ध।

तय लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो

दुख सुख बंध हो संसार, मन उदरण का साजनाहे, पाबंद नित पौत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खावे, जाके कीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार, माया मोह मोह परमिया, किरतरे कर करमिया, करने

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो सब समान।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

इनकी पैज सवारी सारग मोहल्ला चौथा हर घर अमृत नाम दियो प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रखाओ जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे अनदन भगत करे गुर आगे गुर के शब्द सवारे हिरदे नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे गुर प्रसाद अमृत रस जीनिया पे पावे मोह द्वारे सदगुर पुरख अचल अचला मत जे दृढ़ता नाम आधारे तिस आगे जीव देवो अपना हौ सदगुर कह बलिहारे मनमुख प्रम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे सदगुर दाता नदर न आवे ना उरवार न पारे सर्वे घट घट रविया स्वामी सर्व कला कल तारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लिहो उबारे सारग मोहल्ला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जुग जुग करे सो सदकर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रखाओ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए आन दिन रहस पया मन मानिया ज्योति ज्योत मिलाए जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है सांत वसे मन आए गुर कृपाल पहेता पाया हर चरणी चित लाए मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाए अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया हर सहज समाध लगाए हिरदे कपट निर कपट कमाव है मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महागुबारा तो कूटे दुख खाए जब सो प्रसन्न पए प्रा मेरे गुरमुख पर चालाए नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए सारग मोहल्ला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई मन हर हर कथा सुखानी रखाओ दीन दयाल हो भोजन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी संत से नाम मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी हर के रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी पुरख पुरख मिलया सुख पाया सौ चूकी आमन जानी नैनी बिरो देखा प्र स्वामी रसना नाम वखानी श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती हिरदे हर घर पानी पंच जना गुर वसगत आने तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तारी हर रामे नाम समानी सारग मोहल्ला चौथा जप मन आराम।

तू हर स्वामी तू आपे ही जाने अपनी भांत हर के निगट निगट हर निगट ही बसते ते हर के जन साधु हर भगात ते हर के जान हर स्यों रल मिले जैसे जान नानक सलले सल मिला आरंग महला चौथा जापमान नर हरे नर हर स्वामी।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाव्या तू थाओ, दज जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक। तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे। तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ता स्यो गोष्ट। हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत। हर द्यो दर्श मन चाओ, सारग मोहल्ला पंजवा। हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानक ते छपाई। साखी पूत पवान रगाओ, बैसनु नाम करत खड़ कर्मा। अंतर लोभ जुठान, संसबा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान।

करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़या जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी तिरिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो ता को पिन दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारो अंबे अंब मेलो। सारग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा। लेनो नाम अमृत रस नीको बाबर देश्यों गहे रहा रहाओ। दुलभ जन्म किरण काल पायो जातो कौडी बदलहा। काथूरी को घाक आयो लाद्यो कालर बिरख जिवगा। आयो लाभ लभन के ताई ऊंठा गौरी स्यों उर्ज पहा। काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा। सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा। आई मस्त जड़वत की न्याई जो तस्कर दर सानेगा। आन उपाओ न को सूझे हर दासा सरणी पर रखा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरहा। सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत बेराग्यो। अनक पांत अनूप रंग रे देस्यो रुचे ना लागेओ। रघाओ निस बासर प्रे प्रेम खुट्टे रहो नींद पलक नहीं जागेओ। हार कजर बस्तर अनक सीगार रे बिन फिर सबे बिख लागेओ।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविद उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता निमक निमक गुण गाही, अरहाओ अनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई, सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई, आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई, रखाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई, ऊच ते ऊच नाम देव सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई, जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई, सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिन से गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंध कूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे।

छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड सुजानी। जे कर्म बैसन नहीं पावत सो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रगाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल आखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी तौ मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आब मेरो ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जरमीना। रगाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर ए अर्प

मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमन कहा गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पय लिवलाई, सारग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिसकी सरणी पाइये, तिसे त्याग मानुख जो सेवै, तो लाज लोन हो जाइये। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये, गुण निधान नांग।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग महला पंजवा, मोनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

करो नित सेवा गुर अपना नमस्कारिया सर्व फला दीने गुर पूरे नानक गुर निस्तारिया सारग महला पंजवां सिमरत नाम प्राण गद पावे मिटे कलेस त्रास सब नस साध संग हित लावे रहाओ हर घर मन आराधे रसना हर जस गावे तज अवमान काम क्रुद निंदा वासुदेव रंग लावे दामोदर दयाल आराध हो

गाव, जाके सूद परोए जनता, तिस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना, आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की, मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

विचारे रघाव छोड़ो कावट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सातन वंजो सातनक संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

ठाकुर सब ताई निकट बसे सब नेरे रगाव बंदर तोर राम लेवलाई संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे तो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे।

पंडित तो सूरा सोदाना, साध संग जिन हार घर जप्यो नानक सो परवाना। सारग मोहल्ला पंजवा, हर घर संत जिना की जीवन, बिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रखाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीमन, हर रंग रांग पए मन लाला, राम नाम रस खीवन। जो मीना जल से उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर्क की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन।

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

तन धन तो तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए जो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए साध संगत के बल बल जाई

रूप पदत प्राणी नरक कोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार पत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारग मोहल्ला पंजवां विराजत आराम को प्रताप आद व्याद उपा सब नासी बिनसे तीने ताप रगाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आशा चुके सोग संताप गुण गावत अचुत अबनासी।

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उदरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

कर गए लीने सर्वस दीने, दीपक पयो उजारो, नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो। तारक महला पंजवा, मायरी आन सिमर मर जाहे, प्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रघाव, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे, अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते हर

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दाजन तेरा

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम, जा के हृदय वसे पए भंजन ते जान।

आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी ना

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

टिकन न पावे ए बद देखी आखी संता बिनते कोई न छड़या संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तय मोह बिन संता किने न लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारग मोहल्ला पनवा मायरी काटी जमकी पास हर घर जबत सब सुख पाए बीते ग्रस्त उदास रखाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी द्वितीया आस मां उद्यान अटवी ते काढ़े मार्ग संत कहो देखत दर्श पाप सब नासे हर नानक रतन लहो सारग मोहल्ला पंजवा मायरी अरे प्रेम की खोर दर्शन रोचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर रगाओ प्राण मान पात पेत सुत बंधप हर सर्व स्थान मोर त्रिग शरीर अष्ट विष्टा क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिन सो आन ने होर सारग मोहल्ला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन ससदा सुहागन जैसे साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पिछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उधर परमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही तम हो महा अंधार बेट खोरी खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पर संत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पगराओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी।

काम करी सब त्याग के हों शरण पर होगी। नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुखो उपदेसिया नानक सेव एक हरी। सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड हस्त पाखान जंत सर्ब में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौपरी चुनंत कार सुंदर, अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ। तीन पौने लपटाए रही, काज कर्मना जात सही। उन मत अंध तंद रचित जैसे महासागर होहे, उदरे हर संत दास काड दीनी जमकी फास। पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा। हर बिन तेरो को ना सहाई, कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ। तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई, तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही। या जग में कू रहन न पावे, एक आवे एक जाही रहाओ। कां को तन तान संपद का की का स्यो निहो लगाई। जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही। तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही। सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद बिखे रस रचियो आराम सरन नहीं आवे रगाओ। यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे। जो उपजे सो सगल बिनासे रहन न को उपावे। मिथ्या तान साचो कर मान्यो ए विद आप अंधा।

पंजन गुरमुख एको डीठा रगाव कोड कुटंतर के पाप बिनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवर न सूजे दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन कड़ वस्या सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चिरूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार हराती लाल पई रंग लाई आराम नाम ने केवल जानिया मन तृप्त्या सांत आई पंडित पढ़ पढ़ मुनि सब थके परम पेघ थके पेघ तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाएगे जिन विचों आप गवाया साचे शब्द सहतन उपजे मन साचे लिवलाई अगमे गोचर नाम निरंजन गुरमुख मन नमसाई एक समय सब जगतो वर्त विरला एक पछाणे शब्द मरे ता सब के सूजे अनदिन एको जाने जिसनु नदर करे सोई जन बूझे होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द ले बिलाई सारग मोहला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विरले जानी रखाओ हर गैर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविद कर्म करे पाए दूजे बिन शब्दे बहुरानिया हर नाम नावे सोई जन निर्मल फिर मैला मूल न होई ना बिना सब जग है मैला दूजे परम पद खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ न पाई होए दयाल कृपा कर हर जियो नम होए सकाई सच्चा सदाता कर्म विदाता जिस पावे थे ना ए लाए गुरु द्वारे सोई बूझे जिसनु आप जाए देख विस्माद जो मन नहीं चेते आवा गौण संसारा सतगुर सेवे सोई बूझे पाए मोह द्वारा जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सत्संजम करनी कृत कमावे आवन जान रगाई थे दर साचे साज कमावे जिन गुरम

नानक से जन थाए पाए गए जिनकी पद पावे लेखे सारग महला पंजवा अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुगारो डीठा करन करावन उपाय सुमावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राव राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटा जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जंस पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी तीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए कृपाला ते पवसागर तरिया हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहू मैं नागे अनक ब्रह्म जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

देव संदेशा, देव संदेशा प्रभु जो कैसा, कह मोहन परवेशा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थनंतर देशा, बंधन ते मुक्ता कड़कड़ जुगता, कै ना सकोहर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो,

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज।

क्रोध तृष्णा उचर दसवीं दसे द्वार जे ठक एकासी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत का रख तो नानक मन माने ऐसा वर्तर ही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी खूब तरा जे रंग राय संचय बिख माया कर कर हेत पधाए दे पर दर्व चुराया पुत्र कलत्तर ना विस है बहु प्रीत लगाया वेख दिया गई माया तोए गई पछते पछताया।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कभी ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अंकार, शब्दे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुरु का पाणा मान ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसम पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दोए लग टका बरात, दिस चार की करो साहेबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पज बौरे,

काजल की सुधनी लहे जे बासवादी लील तलोहो, ऐसे कनक कामनी बाद्यो मोहो, जो मद बाकी

माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे आत संचय समझे नहीं मूड तान तरती तन होए गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम जो ताची आन निरपय होए पजिए भगवान बदो की ना हो माधो मोस्यों ठाकुर ते जान जानते ठाकुर खेल परे है तो स्यों रहाओ आपन देव देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जाल कहन सुन को दूजा आपे गावे आपे नाचे आप बजावे तूरा कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा दास अनिम मेरो निज रूप दर्शन निमख ताप त्रिमोचन परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ मेरी बंदी भगत छिड़ावे बंदे भगत न छूटे मोहे एक समय मोको गए बंद तौफ मैं पो जवाब ना होए मैं

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिर इस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेगा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त पाए गुरदर्श दिखाया जो जोग भगत सुपावी हम थारे तिर पावन जग तुमरा तू मेरा हूं तेरा सतगुर मिलया निरंजन।

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जां आपे नजर करे हर प्रभ साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हूं जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते आए सदा तू पाव सागर जित पावे पार मलार मोहल्ला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घड़कड़ रहे आसमाई एक बिन मैं अवर न जाना।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुगद गवार, अनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिन से दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उर तहार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग शोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए,

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाग साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पू घर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरे संसार

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ, मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण मारे बौर न कतहु ताया, मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया, मलार मुहल्ला पंजवां बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन, चित्ते उलास आस मिल।

बेसुमार साहु प्रापाया ला चरणिद खाट सरण गई अचुत अवनासी किरव काढे है शाट कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जूनी माट मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हुए रानो कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ एत उत डोल डोल सरम पायो तान तान होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पान प्रवता रहो साध संगत सुख मानो मलार महला पंजवा दुष्ट

चित आवे, आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हुकम मर जाए, पाने बख्स पाने देस जाए, दुआ सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझे सुने आप वखाने।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ। तुनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी। साध संग राम।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मरार महला तीजा अष्टपदी

हां पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, कृपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक करंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरण तिन की, जिन

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, कर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाए प्यारिया सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया सलोक मोहला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तेस राखो मन माहे तेसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लाग गए वार आडाने आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासो लेखा निबड़े बगसे सिबद भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करता।

काल सहे खंड मंडल हैरान। तार कोर बाज तरत है साच तख्त सुल्तान। सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए। अकथ कथा बिचारिये मनसा मने सुमाए। उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए। अजप्पा जापना विसरै आद जुगाद समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास। शब्द खोज इहो कर।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

सोएल। तू जो दयाल कृपाल कहित हैं, आत खुद पयो अपारला। फेर दिया देवरा नामे कौ, पंडियन कौ पिछवारला। मलार बाणी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नागर जना मेरी जात बखियात चमारं, हृदय राम गोविंद गुण सारं। हरहाओ सुरसरी सरल किरत बार नीरे, संत जन करत नहीं पानं। तुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत न हुए आनं। तर तार अपवित्र कर मानिए रे,

ऐसी मांग गोविंद ते तैर संतन की संग साधु का हरनामा जा परम गते रखाओ पूजा चरना ठाकुर सरना तोई कुछ जो प्रभु जी उपरना सबर होते दुर्लभ देही जा को सदगुर मया करेही अज्ञान परम बिन से दुख डेरा जा के हृदय बसे गुर पै।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

यार सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब धीर बिनसै मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस

संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़ो।

हठ निग्रह अतरैत बिटंगा, हौ रूप व्यापे चुके न पंगा, काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा, सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा। कानड़ा मोहला पंजवां कार सतवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूझ गई गई मेरे साध जना, पंच भागे चोर सहज सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रघाओ, जैसी करी प्रा मोस्यों मोस्यों, ऐसी हो कैसे करो, यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई, पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा मोहला पंजवां कर अठवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागिए गुमान मान देखता दयाल लाल, हां हां मन चर नरेन रखाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

विकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात। मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा मोहल्ला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो। प्रे प्रीत प्यारो मोरो अरहाओ। गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो। पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन। ऊंद कमल बिगसोरो।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे।

औरंगी सब एकत बजन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया

पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तस नेड़ न आवे बिख चार चार लिवलावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कढ़ावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड़ कढ़ावे गो त्राहे त्राई सरन जन आए।

वेद है गुरमुख, गुर परचे नाम ते आवै गो, हर हर रूप हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावै गो, सागत नार सदगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो, लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया क्रंग लगावै गो, राम नाम सब जा का तारक, लग संगत नाम ते आवै गो, नानक राख राख प्रा मेरे, सत संगत राख समावै गो, शक्का एक कानड़ा शंत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद से उधरे जिन राम ते आए, जतन माया के कामन आए, राम ते आए सफल पाए, अन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागे, एक चोन लिव लागिया, तजमान मोह विकार साधु लग तरो तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी बड़भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजे नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीव हर अमयो पीवै, जन्म मरणा पागै, सत संग पाई।

बिनवंत नानक जन तूर बांछै हर दर्श सहज सुमायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित प्याई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बेकार बिन से मंदा।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिर हड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केतविद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप न रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर घर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर घर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना अग

हरलार भगत वसिखिया। श्लोक मोहल्ला चौथा, राम नाम राम रव रहे, राम रामो राम रमीत, घड़ घड़ आत्म राम है, प्रभ खेल कियो रंग रीत, हर निट बसे जग जी।

बिलाए, सतगुर मिले नाम उपजय, तृष्णा भुख सब जाए, नानक नामे रतिया, नामो पल्ले पाए पौड़ी, तुद आपे जगत्यो पाए कहे, तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायण, एक ना मेर गुरु तिन जीता, तारूतम गर प्रभ नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दे सबो लह गया, जा नाओ गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, सलोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतोल।

जप हर गुण अकथ सुन सही धर्म अर्थ सब काम ओख है जन पीछे लग फिर सही रघाओ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़भाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग ते छुटे नाम त्याए थई हमरे दुख बो जन्म जन्म के दुख होमे महल लग थई उतार कृपा हर जल ना आए सब केल बिख पाप गथई जन के हृद अंतर प्रा स्वामी जन हर नाम पज थई जय अंति अवसर आए बंत है तय राखे नाम सा थई जन तेरा जस गावे हर हर पाप हर जप्यो जगन थई जन नानक के प्रव राखे स्वामी हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी हर प्रव जाने और कोई निंद करे हर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते काल जो है ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पैकाने ताको कोई अपर न साके जा की भगत मेरा प्रमाने हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ताते जन कौ अंध पया है रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तु पासो हरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुई हर चिराने।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। मां अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग।

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाव, ब्रह्म नाम गुण साग तरोवर, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सदगुर कौ इहो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर बिधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी।

उत्तम होवे, राम नामे बास बसीजे, निर्मल निर्मल कर्म भो कीने, नित साखा हरी जड़ीजे, तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बाजग दीजे, एक जोत एको मन वसया, सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजे, आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीजे, ना बिना नगटे नर देखो, तेन कस कस नाक वढ़ीजे, सागत नर अंकारी कहिए, बिन नावे त्रिग जीवीजे, जब लग सास सास मन अंतर, तद बेगल शरण परीजे, नानक कृपा कृपा करता रहो, मैं साधु चरण पखीजे, कल्याण महला चौथा रामा, मैं साधु चरण तुवीजे, केल बेख दैन होए खिन अंतर, मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ, मंगत जन दीन खरे दर ठाडे, आतरसन को दान दीजे, त्रागे त्राए सरन प्रव्याय, मुको गुरमत नाम जरडीजे, काम क्रोध नगर में सबला, नेत उठ उड़ जूझ करीजे, अंगीकार करो रख ले वो, गुरपूरा काड कढ़ीजे, अंतर अगन सबल अद बिघया, हे शीतल शब्द गुर दीजे, तन मन सांत होए अदकाई, रोग काटे सूख सवीजे, जो सूरज करण रविया सर्वठाई, सब घट घट राम रवीजे, साधु साध मिले रस पावे, तत निरकर बैठिया पीजे, जन कौ प्रीत लगी गुरसेती, क्यों चकवी देख सुरीजे, निरखत निरखत रहन सब निरखी, मोह काढ़े अमृत पीजे, सागत सुवान कई

तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर सियाणव सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिन नावे बाधी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देस मन किया खुशियां की तैवेस या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपजे सुखी हो वह दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपजे से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वे ब्रह्मे उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद पय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरगे साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई रखाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना ले वह वासे कोड़ पंचासा जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे एते गुण एतियां चंगयाइया दे ना पछोतावे तुझ सालाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जाके रूप ना ही जात ना ही मुख मासा

के कर्म नाही तर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दुष सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहा समाए।

मनमोहन आतसलार सगूड औरगाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आतस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रसोई पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आतस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रसोई।

पाई। सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनु देवे, तिस वसे मन आई।

तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले।

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर सबदी, हम नाम मिटो कुर्बान, अमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत मैं हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

आर ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किलभग सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभु की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

अंतर बसे गुरचरना, निरपय साध परे हर सरना, आनंद सहज रस सुख कन्हेरे, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, गुर पूरे अपने कर राखे, हर नाम जपत केलबग सब लाथे, संत साजन सिख पय सुहेले, गुर पूरे प्रभ सिउ लै मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ठाकिया, प्रभाती मोहल्ला पंजवां, सतगुर पूरे नाम दिया, आनंद मंगल कल्याण।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कड है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

न चिंता कछ लोक कहे, न चिंता बनता सुध मीत है, प्रवृत्त माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपालक है, अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतंग अहं बंधं परम माया मलनंग विकारं तिरंत जो अनेक जसरागन न सिमरंत मलीन बुद्धिंग हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण साध संग में ग्रंथ गिर पद पातालंग जलंत दे दीप वैश्वंतर महंत अघातोयंग तुरंगं दुखंत गृह चिंता जन्म ता मरण अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन होर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाबिखयादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं क्रोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन रिद्व संत भय पीत दूत है कर्म करत महानिर्मल है जन्म मरण रहंत श्रोता

परम प्रखोतमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर बेण कुंचंते महीपते विपरीत बुद्धि अंग।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया माया

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

करणा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तब संगे अधवंग नर है, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, सर्ब जी रखया क्रोत, हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं, अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता, तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सासमजया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक, हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है, आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण, परम भयान उद्यान रमणं महा विकट असाध रोगण है, पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक, हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है, कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है, करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है, दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय, तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है,

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंज तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरंग अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है।

यत्नं अरचनं सोमवरंगण रोग सोग वियोगं नानक सुख ना सुपन है। उनहे मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगम मस्तक लेखावती उर्दर है ओ सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाय मुखों तुहारिया मोई देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहां आरती सब सी गार यो जीव सब देवा आस पिया सी सेज सो कंत वशाई है हरगा मस्तक हो वे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब केश साजया तोले किए सीगार के अंजन पाजया ये करया वे कंत ता सब की पाई है हरगा कंते बा सीगार सा बिरथा जाई है जिस करवसया कंत सावड भागने जिस बनया हब सीगार साई सो हागने और सुती होए अत्यंत मन आस पुराईया हर हां जा कर आया कंत ता सब किछ पाईया आसा इत्ती आसक आस पुराई है सतगुर पए दयाल ता पूरा पाई है मैं तन अवगुण बहुत के अवगुण छाया हर हां सतगुर पए दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया तुत्र एव संसार सतगुरु तराया मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नसना पासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद पसे जिस सदा कार पर तेरे रावण जाहे सेई ताला जी है नित प्रभ हृदय पर दर्ब छिद्र कद ठाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते भय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोती तैत चमके बीजल मुको ज्योति खोजत फिरो उपदेश तियो कद पाई है हर हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्श समाई है इठे सबे थाव नहीं तुद जेया पदो पुरख विधत ता तू सोया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नहाय रामदास सार चातरक चित सुचित तो साजन चाही है जे संग लागे प्राण तिसे को आई है बन बन फिर त्यो उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यो हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे मितका चित अनूप मरमना जानी है काग गुणी अपार तो तत पछानी है चित चित समाए ता होवे रंग कना हर हां चंचल चोर है मार ता पावे सच तना उपने उबी पई गयो की ना अंचल सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर हां सोईज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालया करन न सुनही नाद करन मुंद कालया का

हार जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल, चूक है सर्प जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं, मंदर दे जराए। पंचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं, त्यो तन दे वै फूक। अंधा लोग ना जानई, रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चे चढ़ी, सुन हो बीर मसान। लोग सुबाया चल गयो, हम तुम काम दान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दे दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो कु संग की, केले निकट जो बेर। ओ चूले ओ चीरिए, साकत संग ना हेर।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो। साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान कै, जग में

क्या करे जो राम न करे सफाए। जे जे डाली भगत रो सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरे को उपदेश ते।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट। मुक्त पदार्थ पाई है ठाक न अब घट काट, कबीर एक घड़ी आदि करी आदि।

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थीव ही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवेसा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेस तत्ती तोय ना पलवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरें दी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया।

तेमर अज्ञान जागे दर्श द्वार कोई जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिकमकार ते नर पाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी पूस दीव परम प्यार कौ कीर्त कलश हार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गुर परस मुरार तय तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बथार साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जाल पद्म विचार कल्प तार रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिप्त तेरे एक लेवतार कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजार लैणा जगत्र गोर परस मुरार तय ता हदरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हरगर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर प्रवान या की दृष्ट अचल ठान बेमन बुद्ध सुथान पैर सील सनाहो सगत बिदार कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गुर परस मुरार दृट तरत तम हरन दैन अगपाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बेनासन लो मुवस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कैन अमृत कल ठालन सदगुरु कल सदगुर तिलक सत लागे सो पैतर गुर जगत फिरन सी अंगरो राज योग लेना करे सदा अकल लिवरे करण सु इच्छा चार है द्रम सपूर जो निव खवे कस बेमन बीचार है ए तत जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पय संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख ग्रहज लयो हर परस्यो कल सुमुलवे जन दर्शन लेने पयो मन विश्वास पायो गैरग हदरथ दियो गल नाल तन नठ्यो अमयो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सदगुर सहज समाध रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार्द हरन पेखंते कलमल त्रसन सद रंग सहज कल उच्चर जय जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम आधार आर नाम समाध सोख सदा नाम निशान सोख है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरे बो है नाम परजन पायो सब प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे है गुरु के अड़सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोह सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोह जिस सच संजम वर्त सच कबजन कल वखाण दर्शन परसे है गुरु के सच जन्म परवान अमेदृट शुभ करे हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोम हो वस करे सबे बाल सदा सुख मन वस है दुख संसार है खोवे गोर नाम नदरी आओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेवी है अहे निस

सदगुर प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पोबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नखेतर अवर त्रू मंडल

सदगुरु नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरण खिन मातर जाको दृष्ट धारै।

अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। और कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, और कर शब्द सपुन

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपर लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लेना ताप जोत जग तारी।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण, शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सुबर, सदा सौभिद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे, फिरत सगल जोग, कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको, शिव मन गए ना तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक, अनेक ताप जटा जूट पेख किए, फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुरु सुख पाए, कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर गात, तेज पुंज ते लोक प्रगास। देखत दर्श पटक परम भजत, दुख परहर सुख सहज बेगास। सेवक सिख सदा अत लुभत, आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिदर सिद्ध न छोडे सत। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कहो त्यो तत्। ताहे का प्रवाह काहू की, जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव, पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तय घर परम पद पायो। सदगुर नानक भगत करी एक मान, तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहला सुदामा, पुपुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन, नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कर पिंतर, जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरण तुझे नार, काम क्रोध मिट्यो जो तिण। अचा का स्मरण तुझे तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सार, बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तय घर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत, नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत, हृदय घर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत, जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत, हृदय सिद्ध नवन पावे। तो ही रामदास गुर बल पान, मिल संगत तन तन करो। जे सदगुर लग प्राप्त पाई है, तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर, तेव गुर अमरदास कह गुर रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो, निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान, तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन, नाम लय उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस मान, तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानेओ, इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर, तेन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋਡੀ ਸਿਫਤ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤੋਂ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲਬ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਓ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗਦਲ, ਤੂੰ ਸਤਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ, ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਤਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਖਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ, ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ, ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਵਤੀਜ ਪਤੀਣਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ, ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ, ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ, ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ ਅਗੇ ਗੈਣ, ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ, ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸੈਤਾ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਝ ਜਸ ਭਗਤਾ, ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ, ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਓ ਨਾ ਹੁਟੈ, ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਾਮਿਤ ਨਾਨ ਖੁਟੈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ, ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ, ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ, ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ, ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवार्यो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उधरयो सब गुर दे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरय तै जन के कलस दीप पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहिथा ओ सतगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहाय अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आदि पुरख प्रतख लिखो अशर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास जा कुहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो बेन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जन गोर भगत के हेत पाए रहो मिल राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासव जोग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माये करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चूके रे मन भेद बपेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय

तार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट कर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मैं जो तरूपी रहो पार पान मसरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर

न पाए मन मुगसे ती संग करे मोह काल खदागल गाए मोह काले तिन लोभियां जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतरै जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मिटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए चुगल निंदक भुखे रुल मोए इन्हां हथ ना कथा उपाय बार पाखंड सब कर्म करै मन हिरदय कपट कमाए खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खरोआ आए नानक की प्रा बेनती हर भावे बख्श मिलाए मन आवन जान ना सुजई ना सुजे दरबार माया मुहे पलेटिया अंतर अज्ञान गुबार तब नार सुता जागया सिर डंड लगा बहु भार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोह द्वार नानक आप हुए उदरे तब कुटुंब तरे परवार शब्द मरे सो मोआ जापे गुर प्रसादी हर हस्त हापे हर दर्ग है गुर शब्द संजापे बिन शब्द है मोआ है सब कोए मनमुख मोआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रव है अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद।

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन सो लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस जून।

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एओ मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

दूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

तिथे भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड।

जतपहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर, जो जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मश पयाले। गावन तुदनो रतनो पाए तेरे, अठ सठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब। साचा साची नाई, हैपी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती। कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना। ज्यो तिस दी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी। फिर हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो सहा पत साहेब। नानक रह नरजाई, आसा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तिर रहे समाए।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे भाव है सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तै डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही प्राप्त मान खुदे हुरिया, गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेरे साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, इहां खाड चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटै दिन सुरण आरे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी।

सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राख पाओ मत देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी।

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जा पद लिखे ना पवे सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजिए नाउ मनिए, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइए ता जियो के हा होए। जलिया सब सियाणपां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रह करतार फाही सुरतम लुकी वेश हौ ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुत।

नानक आणिया वै रास विणना वै नाही सावास। श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह कहो कुटारा कर सके ज्यो साहेब राख त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ। पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानण साहेब तो मिलै रहाओ। इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई नाओ मंगी है नामे सहज समाए। मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ। जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहार नै जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहार जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए। जे लख स्त्रियां भोग करै नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमती हर ते आए, श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है। गुर पूछ करै व्यापार हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो वई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बबेक विचार, सो सेवक हर आखिया जो हर राखै उर धार। मंतन सोपे आगे धरे होमै विचों मार, तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाई है मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले, सो मिलै हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए, अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुरसरनाई सुखल है अंदर नाम त्याए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए, गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए, मन मुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द महल न उतरै मर जमै होए खुवार, धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे व्यापिया, बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीनै सदा दुख, हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावै बिकसै हर बैराग आनंद, अहनिस भगत करे दिन राती होमै मारन चंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदै नाम वसाए। अंतर लागना तामस मूले विचों आप गवाए, नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरै भाग बैराग, मनमुख फिरै न जाने सतगुरु होमै अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही शब्दा पाई है अंतर सब वथ होए। खिन खिन नाम संभालिया गुरमुख पावै कोए, नाम निदान खुट है वडभाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार, हर जियो सदा त्याए तू गुरमुख एक अंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी विचार, हलत पलत सुख पाएं दे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार, सतगुर ते जो मोह फेर है मथे तिन काले। अंदन दुख कमाम दे नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे, कहना किशु ना जावई जिस पावै तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा।
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਓਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਓਹ ਮਨ ਤਾਵ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ।

अंतरों दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया होमै विचों खोए, नानक गुरमुख नाम धियाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे, सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घट घट आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार। गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सा तन्ना मैं बाहरी अवगणवंती रोए। सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए। आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुरसा लाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

पूरा पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिन को नजर करे खसम पछाणै अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हो मैं दूर करे नानक सो बावंतियां सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हो कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देह मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभु प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहारे जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सब किस तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जी ओ बख्से बख्स लए सुख सदा सरीरे गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तास मन जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार मन के बेकार मने तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाईऐ मन मुख फिरै दीवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान सब कुछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बुलाए त्यों बोलीऐ जाय आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द में लावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवै सुख होए श्री राग महला तीजा जग हौ मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हौ मैं धोती किवै न उतरै जे सौ तीर्थ नाए बहुविध कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पढ़िया मैल न उतरै पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मलहों मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीप

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मोहत का पाहुना काय सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हो।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए।

मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग, करना हर पिछान, गुरप्रसादी मुखी उजला, जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया, तजिया सब महान, पाया लाहा लाभ नाम, पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया, दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया, आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया, गुर का शब्द पहचान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले पाइए शब्द निधान।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथा हो वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसा हो कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाह हो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे न आवै जाए ना वे छोड़िया विछड़ै समय रहा समाए दीन

कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हम मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साधकी अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किश्त सही हाथ, मारा पे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुर होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिव तीरतिया पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटों कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बिबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं पिरड़ावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वस।

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिनना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अदको त्यो सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरियावले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सरतल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हो मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिय शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिय अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सोजी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महल

ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणी ना पर्यंक समाए रहाओ। पुली फिर जसा

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है, होमै जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावै, कोई न मेटै भाई। दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै, दूजा पाओ न जाणै। सतगुर भेटै निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणै। एको पढ़ै एको ना बूझै, दूजा अवर न जाणै। खड़ दर्शन योगी सन्यासी, बिन गुर परम भुलाए। सतगुर सेवै तां गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागै, आवन जान रहाए। पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै, बिन गुर परम भुलाए। लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए। जां नाउ चेतै तां गत पाए, जां सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जां सतगुर मिलै सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए। सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता। प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा, सहजै नो सब लोई दी। बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके। भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया। अपनी कृपा करे रजाए, भाई रे गुर बिन सहज ना होए। शब्दै ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए रहाओ। सहजे गाव्या थाए पवै, बिन सहजै कथनी बाद। सहजे ही भगति उपजै, सहज पैर प्यार बैराग। सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजै जीवन बाद। सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए। सहजे ही गुणी उचरै, भगत करे लिवलाए। शब्दे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए। सहजे काल विडारिया, ससरण आई पाए। सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए। सेवड़ भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए। माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए। मनमुख कर्म कमावणे, हउमै जलै जलाए। जमण मरण ना चुकई, फिर आवै जाए। त्रिह गुणा में सहज ना पाईऐ, त्रै गुण परम भुलाए। पढ़िए गुणिया क्या कथिए, जा मुंडो कुथा जाए। चौथे

स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवै काज चित आवै ओस पार ब्रह्मो ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंट का कड़ी ना बैसन सोए चित आवै उस पर ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोग प्यार चारे किलवख उन अग किए होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया चित आवै उस पर ब्रह्म तन निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे तपित पीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर माते दुगने पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्थार बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि चाए लग रहया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत शोभा निर्मल दीत मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सदगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू।

मात पिता सुत ने हुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरध पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा ले

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवे जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े। नानक हर तन मालो संत सुंदर स्वामी ताम भगत विश्राम। आसा लग जीवते जियो मन तने गुलतान। सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते। बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे। साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे। हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा। जप जप नानक जीवते। डखणा

संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होहया कर गै लीने नानक प्रापया रे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सदकै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम मैं

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीतम लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मोलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर हर एक सह दा है अमर एको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सब नी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया एका शाओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे।

सरै सरैयत करै बिचार बिन बूझे कैसे पावै पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहै हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना वे तू वरदा हर सबना पाणा सब तुझै ते आवै जी जंत हर सारंग पाणा जो गुरमुख हरिया राज दे तिन्हों कुरबाणा तू आपे आ वरदा कर चोज विडाणा श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रह कऊ न तूट सने हो कलो मसाजनी जाए सी लिखिया पी ना ले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सचै पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल न चलई वेखो को वे उपाय सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सबदी

अस पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे जो सबना उपर हुक्म जलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नावे अगे आण निवाए श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखनी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार मन तन सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामे कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावी सृजनहार महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार मनमुख ज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना भौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बै करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारा दे वड़ियाई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख ली ओए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो ए श्लोक महला तीजा।

मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए रहाओ, अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्तह न प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जात जियले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ, तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का, अचरज एक सन ओरे पंडिया, अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेख ली लाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दृष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कलक कनक कर सिख पाया, तिसमें तार चोवै त निर्मल, रसमै रसन चवाया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको योगी, कहो कमन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्म, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता, श्री राग

जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीख बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यों तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

वन त्रिनत्र पवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तसै अराधे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए, जिजत पाना तित तलाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण भ्रम ने अधारा, भग जीवै गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै, आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, हुए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकरियत भारी, तुमरे करतब तुम ही जाना हो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस है सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दा धियाई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो। सास सास नानक सा लाहे, सिमरत नाम काटे सफाहे, पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याईये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै, मन चिंदे से ही फल पावै, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ, सब पौ बिनसै हर हर त्याईऐ, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थिए जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा घड़ घड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रभ मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किछु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया आधारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई।

खिनमै थापो थापन हारा, आपे कंति आप सारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन वे जोगा जियो, अंचल लाए सब श्रेष्ठ तराई।

जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंध न जागी, बहां पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है, जिस मृतवार ने चल पाई है, नानको प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हो किस केरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हो मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछो तावने आ। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर कै शब्द नाम निशाणे, सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावने आ, मनमुख पूला ठावर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवने आ, सागत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे। लिखिया लेखना मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावने आ, पे येड़े पिर जातो नाही, झूठ विछुनी रोवे ताही। अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बख्सावने आ, पेयड़ जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत बिचारा। आवन जाना ठाक रहाए, सच्चा नाम समावने आ, गुरमुख बूझे कथ कहावे, सच्चे ठाकर साचो पावे। नानक सच कह बेनंती, सच मिले गुण गावने आ, माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हाँ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावने आ, हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ। गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदन हर गुण गावने आ, रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए, तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदन गावे, सहजे पद करावने आ, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावने आ, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता, दर सच्चा सो जी पावने आ, पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी। अज्ञानी अंदा मग न जाने, फिर आवन जावने आ, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हाँ मैं मेरा ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावने आ। हाँ मैं मार मन वसाया, गुर चरनी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई, जिस बख्से तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जम्मन मर

पूर्ण पूर रहा सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समार सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन निचलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वडभागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नहि चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउं जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोक सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा सुमाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मेलावणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता, गुरमते आप मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे।

कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हमै बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्थे होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो, माज महला पंजवा, प्रभ बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावणिया, हां वारी जियो वारी, गुरमुख मंतन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरता बणिया, सगल मनोरथ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिए सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाण विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख ले होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम आप गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की हो इशार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिया निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन मानी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवन आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाय न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन भी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग

कुती तात बोला जे समझाइए पढ़िया समर्थ पाठ अंधा चानन रखिए दीवे बल पचास चौने सोय ना पाईए चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाईए टह ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला तैहा कंचन तुटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती तुटे पतार पुत्ती गंड पवै संसार राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पवै जा खाए काला गंड नदियां मीह झोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरतै संसार मूर्ख गंड पवै मोह मार नानक आखै हो बिचार सिफती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाईऐ खोटे सटियै बार वार खोटे सच्ची दरगै सुटिए किसे आगे करै पुकार सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सच्ची दरगै मनियन गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार सलोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा अस्त एक जिगर कुई एक तू ही महला पहला ना दादे देहांद आदमी ना सबत जेर जिमी अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन पौन थिर ना कोई एक तू ही महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर देहंद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया सोए मेटना सकै कोए कला धरै हिरै सुई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया विण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सिंहा बाजा चरगा कुहियां इन आखवाले

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सोवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले ताके असा नानक ज्यों ज्यों सच।

जा तू सच्चा ता सबको सच्चा कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़िया मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हाउ पाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हम मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगतां तै सह सारियां जोड़ कदे ना आया करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलिया न जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खोआया न जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया उना खसमै कै दर मुख उजले सच्चा शब्द सुहाया। सलोक महला पहला साबाही सा लाहा जिनी त्याया एक मानो सेई पूरे साहा वक्त है उपर लड़ मोए।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किश कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाणै भीतर होंदी वस्त न जाणै हौ न मुआ मेरी मुई बलाए ओह न मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर ब्रह्म।

गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरै समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारै सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले।

तीन अवस्था कहे वखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस जाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुरसबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुगचारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट न होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरी री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

गुरमुख नाम निदान लै दरगह ले छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जोनी पाए गुरमुख आ पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेय पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे में लाइऐ रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईऐ हों मैं दुबदा बिनस जाए सहगे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मन मुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिलो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

सारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हरे आप करे आपे निस्तारा। हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निस्तारा, हरे आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हम वन जारे राम के, हर वणज करावे दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया।

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वेगार फिरै वेगारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो करके कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया करके कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चेत हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चेत हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत ना आवै तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लहे हर भावै हम अपराधी राखे गुरसंगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावै तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंद मेरा सखा सखाए जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे गौड़ी बैरागण महला चौथा कंचन नारी मैं जियो लुप्त है मोह मीठा माया घर मंदिर कोड़े खुशी मन अनरस लाया हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग ना मेरा क्या मोहले बोले गुण बिहून नाम जपया ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी जिंदिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू मंत्र जामी हम जंत विचारे क्या करै सब खेल तुम स्वामी जन नानक हट विहाजिया हर गुलम गुलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखै नदर मझार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यो सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ की है इयाने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ
जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखे रसना मास रत केरी कोई जानो मास काती कै किश हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करे हर राखे पै जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किश हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इश्पुनी जन केरिया ले सतगुर धूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने ते सतगुर मिलिए तोटा मूल ना आवई हर लाभ ने दृढ़ी है जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरै हर गुण गा वाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरा मंत्र मुख हर बोली गुरमुख रंग पया तगूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब ज्योत सबाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग कै अपरंपर पुरख्या तोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनांगत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन तन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामै नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर तुम जेवड़े अवर ना दाते जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिए हर कृपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर सेती रचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मंतन बेद लियो हर साचे जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ जिन कौ प्रीत नाही हर सेती ते सागत मूढ़ नर काचे तिन कौ जन्म मरण अत भारी विचविष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे करनाचे आपे सह वड्डे प्रभु स्वामी हमन जारे हैं ताचे मेरा मंतन जियो राज सब तेरी जन नानके सह प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल